0: 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान जान गंवाई और अपने घरों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हुए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे। इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 मजदूरों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तीस रात प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँच कर भरत पुलकित हुए। हृदय में श्री राम, सीता और लक्ष्मण के लिए उमड़ते स्नेह से, आंखों में

रहे हैं और न ही पिता के निधन का शोक है, क्योंकि दिवंगत महाराज का पुण्य और श्रेयस समस्त जगत में विदित है। जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए और पुत्र विरह में नाशवान शरीर त्याग दिया, ऐसी पुण्यात्मा के लिए शोक करना तो उसकी मर्यादा के प्रति अपमान होगा। भरत को शोक इस बात का है कि राम लक्ष्मण तथा सीता मुनियों का वेश धारण कर वन वन फिर रहे हैं, वल्कल वस्त्र पहनते हैं, कंद मूल का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा कर सोते हैं और वृक्षों की छाया में सर्दी गर्मी वर्षा और हवा के झोंके सहते हैं। इसी दुख से भरत की छाती थकती है, न भूख लगती है न नींद आती है। इस दुख का निदान उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। निदान मात्र एक है, श्री राम को अयोध्या लौटा लाना।

0: নজরুলগীতি পরিবেশন করলেন গীতশ্রী দুয়ারি, আকাশবাণী কলকাতা। অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। পরবর্তী অনুষ্ঠান একটু পরে।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রূয়ন্তাম, প্রবাচকঃ যতীন শর্মা। अथ वार्ताः। अशीतितमे स्वतंत्रता दिवसावसरे अद्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्राय स्वकीयं संदेशं प्रदास्यति। राष्ट्रपतेः एतत् संबोधनं सायं 7 वादने आकाशवाण्याः समग्रे राष्ट्रिय संजाले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य दूरदर्शनस्य सर्वासु वाहिनीषु प्रथमं हिन्दीभाषायां ततः आंग्लभाषायां च अस्य प्रसारणं भविष्यति। दूरदर्शने हिन्दी आंग्लरूपयोः प्रसारणात् परं अस्य क्षेत्रीयभाषासंस्करणानि दूरदर्शनस्य क्षेत्रीयवाहिनीषु प्रसारयिष्यन्ते। अवधेयमिदं यत् आकाशवाण्या अपि संबोधनस्य क्षेत्रीयभाषासंस्करणानि रात्रौ 9:30 स्वकीयेषु क्षेत्रीयप्रसारणकेन्द्रेषु प्रसार्यते। संसदः प्रावृट्टसत्रं गतदिने समाप्तिमगात्। उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् अनिश्चितकालाय स्थगनेन सह सम्पन्नम्। एतत् सत्रं जुलाई मासस्य 20 दिनाङ्के प्रारब्धम्, यस्मिन् 15

0: दिवसेषु आहत्य एकोनविंशतिः उपवेशनानि अजायन्त। अस्मिन् सत्रे सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयकं समेत्य द्वादश विधेयकानि संसदा पारितानि। स्वकीय समापन भाषणे राज्यसभाध्यक्षः सीपी राधाकृष्णन् इत्यसौ सदने भूयो भूयशः संजातेषु व्यवधानेषु चिन्तां प्राकटयत्। तेनोक्तं यत् एतादृशेषु विघ्नेष्वपि सदनेन द्वादश विधेयकानि पारयित्वा स्वकीयं मूल वैधानिक कर्तव्यं निर्व्यूढम्। अध्यक्षेण सूचितं यत् सत्रे राज्यसभायाः कार्यं केवलं 37:49 होरात्मकमेव प्राचलत्। इतः पूर्वं संसदा खनिज संशोधन विधेयकं 26,2000 पारितं, यच्च गतदिने राज्यसभयापि अनुमोदितम्। कृष्णांगारक खनिमंत्री जी किशन रेड्डी इत्यसौ 57:29 मूलाधिनियमस्य संशोधनार्थम् एतं विधेयकं सदने प्रस्तुतवान्। अद्यतावत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसः वर्तते। देशस्य विभाजन काले स्वप्राणान् आहुतवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि अत्रावसरे देशः श्रद्धांजलिं समर्पयति। अस्य दिवसस्य आचरणाय कृत्स्ने हि देशे राष्ट्रिय राजधान्यांच विविधाः स्मृति कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। केन्द्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः अद्य विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसस्य पूर्व संध्यायां नवदिल्ल्यां आयोजितं एकं विशेष कार्यक्रमं संबोधितवान्। एकस्मिन् सामाजिक संचार पटलीय संदेशे असौ देशस्य विभाजनकाले घोरयातनाम् अनुभूतवद्भ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः स्वकीयां भावपूर्णां श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। तेनोक्तं यत् सर्वकारः एतं दारुण इतिहासं संस्मरन् राष्ट्रस्य एकताम् अखण्डतां सामाजिक सौहार्दं च निरन्तरं सुदृढीकर्तुं पूर्णतया कटिबद्धो वर्तते। स्वतंत्रता दिवसावसरे दिल्ली मेट्रो सेवाः सर्वेषां कृते अन्तिमस्थानकेभ्यः प्रातः 4 एव प्रारप्स्यन्ते। दिल्ली मेट्रो निगमेन निगदितं यत् एषः निर्णयः स्वतंत्रता दिवस समारोहे सहभागितायै आगच्छतां विशेषातिथीनाम् आमन्त्रितानां सुगमगमनागमनाय गृहीतः। नाइजीरिया देशस्य लागोस नगरे 4 यावत् आयोजितायां राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धायां अत्युज्ज्वल प्रदर्शनेन सह भारतं 35 पदकानि स्वायत्ति कृतवत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
2: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कल विभाजन विभीषिका

0: स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नौकाओं पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नयांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक बनेगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे। इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पश्चिमी यूरोप का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं ब्रिटेन में इस असामान्य गर्मी की 5वीं लहर आने की आशंका है, जिसे अब तक की सबसे भीषण गर्मी माना जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The president's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashwani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashwani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. Today is Partition's Horrors Remembrance Day. The nation is paying homage to all those who sacrificed their lives and suffered unimaginable pains during the partition in 1947. We have a report.
2: To mark the Partition Horrors Remembrance Day, various programs are being organized across the country, including in the national capital. In a fitting tribute to all those who lost their lives due to the partition of the nation and were displaced from their roots, in 2021, the government had decided to observe 14th August every year as the day to commemorate their sacrifice. The Partition Horrors Remembrance Day keep reminding people of the need to remove the poison of social divisions, disharmony, and

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका

0: अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डर और मैट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी।

0: गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
1: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे, जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित DBT को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
3: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जलस्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा

0: स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल सातवीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी ना चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी GST से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव, 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu to address the nation today on the eve of 80th Independence Day. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Delhi government approves 20% quota for former Agniveers in Fire Services and Prison Department. Age limit relaxed. 7 workers killed and 14 injured following landslide and water seepage in under-construction tunnel in Chamoli district of Uttarakhand. And Iga Swiatek beats Elena Rybakina to claim the women's singles title at Canadian Open Tennis. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The President's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashwani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashwani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. Today is Partition Horrors Remembrance Day. The nation is paying homage to all of those who sacrificed their lives and suffered unimaginable pain during the partition in 1947. We have a report.
3: To mark the Partition Horrors Remembrance Day, various programs are being organized across the country, including in the national capital. In a fitting tribute to all those who lost their lives due to the partition of the nation and were displaced from their roots, in 2021, the government had decided to observe 14th August every year as the day to commemorate their sacrifice. It also ensures that future generations remember the

9:11 है चुड़ी की घड़ी का समय। आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 297.6 मीटर्स अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारा ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। पेश है बातों और गीतों का कार्यक्रम रसधारा और आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा के साथ। फिर एक बार शर्मिष्ठा हाजिर हो चुकी हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम रसधारा को लेकर और फिर एक बार बातें होंगी एक नए विषय को लेकर। दिन है आज शुक्रवार और अगस्त महीने की 14 तारीख की सुबह आप सुन रहे हैं आपकी रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा को। कार्यक्रम चल रहा है रसधारा। फिर एक बार एक नए विषय को लेकर आज के इस कार्यक्रम में हम करेंगे बात और आखिर आज का विषय क्या है, किस विषय को लेकर होंगी बातें और एक से बढ़कर एक गीत संगीत का सिलसिला भी जारी रहने वाला है इसी कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के विषय के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ। जी हाँ, आज एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिक्र करने वाली हूँ इस कार्यक्रम में जिन्होंने हमेशा अपने आप को आज़ाद रखा। जी हाँ, जिन्होंने अपने अपना परिचय आज़ाद नाम से दिया। जी हाँ, और ये जो आज़ाद नाम उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया था, रखा था, इसके पीछे एक खास मकसद था, कारण था। और वो मकसद या फिर कारण यही था कि आज़ाद का अर्थ होता है बिल्कुल खुले

आसमान में जिस तरीके से पंछी आज़ाद होकर बिना आगे पीछे की चिंता करते हुए घूमता फिरता रहता है, ठीक उसी सोच को लेकर इस शख्स ने अपना नाम आज़ाद रखा था और मन ही मन में अपने आप से ये वादा भी कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जी हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, क्रूर सेना के हाथ में कभी भी मैं नहीं आऊँगा और तभी मैंने अपने आप को आज़ाद नाम दिया है। और आखिर तक उन्होंने इस नाम का नाम रखा, जी हाँ इस ये जो आज़ाद नाम था, इस आज़ाद नाम का नाम उन्होंने रखा। तो बातें होंगी और भी इस शख्स के बारे में जिन्हें हम आज़ाद के नाम से जानते हैं, और वाकई में इस नाम को रखने के लिए उन्होंने आखिर कितने ही संघर्ष किए। साथ ही साथ बात करूंगी इन शख्स से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर रोचक बातें आप सभी से साझा होंगी इसी कार्यक्रम में। फिलहाल रुख करते हैं एक फिल्मी गीत की ओर और उसके बाद बातें होंगी आज के उन्हीं स्वतंत्रता सेनानी को लेकर जिन्होंने अपना परिचय आज़ाद के तौर पर दिया था।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने

बंटवारे की त्रासदी से। विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण।

बजकर 19 मिनट है। स्टूडियो घड़ी का समय बातों और गीतों का कार्यक्रम रसर आप सुन रहे हैं आज के दिन। और बात हो रही है आज के दिन एक ऐसे वीर योद्धा को लेकर जिन्होंने हमेशा अपने आप को आज़ाद रखा और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आज़ाद के नाम से अपना परिचय दिया। भारत को आज़ाद कराने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक चंद्रशेखर आजाद का नाम भी शामिल था। हालांकि इनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन आजाद इनकी पहचान कैसे बनी इसके पीछे भी एक कहानी है। आजाद कहते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे।

चंद्रशेखर आज़ाद वे महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ये संकल्प लिया था कि वे कभी भी ब्रिटिश सरकार की गिरफ्त में नहीं आएंगे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस प्रतिज्ञा का पालन किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आज़ाद नाम से अमर हो गए। पूरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन लोगों के सामने अपना परिचय दिया आज़ाद के तौर पर। जन्म 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश की धरती पर जन्म लिया था इस वीर साहसी सैनिक ने। आज़ाद नाम और पहचान की बात भी करूंगी इसी कार्यक्रम में, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि आमतौर पर हम लोगों को ये कहते सुनते हैं कि खाना जो है सही समय पर खाना चाहिए। अगर खाने का टाइम टेबल थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो उसका बुरा असर आपकी सेहत पर पड़ता है ना। ये बहुत ही आम सी बात है, हमारे घर में भी बड़े बुजुर्ग अक्सर इस बात को कहते रहते हैं। अगर घर के बड़े या फिर बच्चे कोई भी खाने पीने का जो टाइम टेबल है उसे थोड़ा सा गड़बड़ा देते हैं तो अक्सर ये बात हमें सुनने को मिलती है कि आज अगर खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो इसका फल जो है वो आने वाले समय में ज़रूर मिलने वाला है। लेकिन ये बात शायद हम पर लागू होती है, लेकिन इस तरह के वीर सैनिकों के लिए शायद खाना पीना समय पर हो ना हो इसकी कोई ज़्यादा इस बात का कोई ज़्यादा असर नहीं था, क्योंकि खाने पीने से ज़्यादा उनके दिलो दिमाग में बस एक ही चीज़ का क्रेज़ रहता था, वो था कि हर काम को करना है तो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए, और देश का ख्याल रखते हुए देश की हर एक छोटी छोटी बात को दिलो दिमाग में बसाते हुए रखते हुए ध्यान में रखते हुए हर एक काम को करना है, हर एक कदम को फूंक-फूंक कर रखना है। और चाहे ये सब करते हुए हमारे खाने का टाइम टेबल भले ही बिगड़े लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसके बारे में आज़ाद का क्या सोचना था, क्या मानना था, इसके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा तराना आप सभी सुनने वालों के लिए। सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम रसधारा।

9:31 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। आकाशवाणी कोलकाता का संचेदा चैनल आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 297.6 मीटर तथा 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम रसधारा, और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त शर्मिशा। और बातों और गीतों के कार्यक्रम रसधारा में आज बात हो रही है उन महान शख्स के बारे में, उन महान क्रांतिकारी वीर सैनिक को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने अपना परिचय देश के लोगों के सामने आज़ाद के तौर पर दिया। और आज़ाद नाम और पहचान की बात मैं करने वाली थी। असहयोग आंदोलन के दौरान जब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने गर्व से अपना नाम आज़ाद बताया था। पिता का नाम पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया था स्वतंत्रता, और घर का पता पूछने पर बताया था जेल। वे एक कुशल संगठनकर्ता, और उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के माध्यम से क्रांति की अलख जगाई थी। उनके साहस और दृढ़ निश्चय के कारण ब्रिटिश पुलिस उन्हें कभी भी जीवित नहीं पकड़ सकी थी। और इस तरीके से उन्होंने जो अपना नाम दिया था ना आज़ाद, उसे उन्होंने कायम रखा और अपनी बात पर

आखिरी दम तक अड़िग रहे और ये साबित किया कि उन्होंने अपने आप से जो वादा किया था, अपने लिए जो नाम दिया था और आज़ाद के तौर पर लोगों के सामने अपना जो परिचय दिया था वो बस यूं ही नहीं था। वाकई में एक अलग तरीके की ज्योति उनके दिलो दिमाग में जल रही थी देशभक्ति की। बात होगी और भी चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर आज के इसी कार्यक्रम में। 14 अगस्त का दिन है आज और आज के दिन देशभक्ति से ओतप्रोत वीर सैनिक चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर रोचक बातें आज के इसी कार्यक्रम में साझा हो रही हैं और भी बहुत सी बातें उनसे जुड़ी हुई हैं जो कि साझा करूंगी इसी कार्यक्रम में। लेकिन फिलहाल मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म लीडर से सुनिए ये गीत।

बात करते हैं चंद्रशेखर के बचपन से जुड़ी कुछ रोचक बात को लेकर। चंद्रशेखर का पूरा बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बीता था। यहाँ पर उन्होंने बचपन से ही निशानेबाजी और धनुर्विद्या का प्रशिक्षण उन्होंने पाया था। लगातार मौका मिलते ही वे इसकी अभ्यास करते रहते, जिसके बाद ये धीरे धीरे उनका शौक बन चुका था। और जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है, तो पढ़ाई से ज़्यादा चंद्रशेखर का मन खेलकूद और दूसरी गतिविधियों में लगा करता था। जलियांवाला बाग कांड के दौरान आज़ाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना ने बचपन में ही चंद्रशेखर को अंदर से झकझोर दिया था। उसी दौरान उन्होंने ठान लिया था कि वे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसके बाद उन्होंने ये तय कर लिया था कि वे भी आज़ादी के आंदोलन में उतरेंगे, और फिर महात्मा गांधी के आंदोलन से उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया।

9:45 है चुड़ी घड़ी का समय और इस वक्त यहाँ पे संग शर्मिशा के सुन रहे हैं बातों और गीतों के कार्यक्रम को जिसका नाम है रसधारा। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारा ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं उस वीर सैनिक वीर योद्धा के बारे में जिन्होंने अपना परिचय आज़ाद के तौर पर दिया था। तो चलिए आज़ाद के स्वभाव को लेकर आपको कुछ बताऊँ। चंद्रशेखर आज़ाद का स्वभाव अत्यंत ही निडर, स्वाभिमानी, साहसी और देश प्रेम से ओतप्रोत था। वे बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे लेकिन उनका दिल देश के गरीबों और साथियों के प्रति बेहद ही दयालु और स्नेहपूर्ण था। वे अन्याय के खिलाफ कभी नहीं झुकते थे और उनका जीवन सिद्धांतों पर आधारित था। कुछ ही देर पहले मैं खाने पीने के टाइम टेबल को लेकर बात कर रही थी, है ना। और ये जो टाइम टेबल है, खाने पीने का जो टाइम टेबल है, ये हमारे लिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन आज़ाद के लिए खाने पीने का टाइम टेबल कोई ख़ास मायने नहीं रखता था। कभी अगर खाना नसीब हो गया तो खा लिया, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। और इस तरह की सोच वे रखते थे और सिर्फ किसके लिए, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए। देश को प्यार करते थे, प्रेम करते थे और इसीलिए देश प्रेम उनके अंदर इतना ज़्यादा था कि उस देश प्रेम की वजह से कभी कभार अगर खाना नसीब ना भी हुआ तो भी कोई ज़्यादा दुख उन्हें इस बात का नहीं होता था। चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन एक साधारण और कड़क क्रांतिकारी जीवन था। वे भूमिगत रहकर देश के लिए काम किया करते थे, इसीलिए उनका खान पान बहुत ही सादा और अनिश्चित था। उन्हें कई विशेष या फिर स्वादिष्ट भोजन की आदत बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वे वही खाते थे जो समय पर मिल जाता था। क्रांतिकारी गतिविधियों में व्यस्त रहने के कारण उनके खाने का कोई तय समय नहीं हुआ करता था। कई बार उन्हें भूखा भी रहना पड़ता था और ये सारा त्याग उन्होंने स्वीकार किया था सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम के चलते। और आखिरकार ये जो देश प्रेम की ज्वाला जो जिसे उन्होंने अपने दिलो दिमाग में जलाकर रखी थी, आखिर एक समय ऐसा आया जब उनकी ये जो तड़प थी देश प्रेम की, देश को आज़ाद कराने की, आखिर वो समय आ गया और रंग दिखा सिर्फ और सिर्फ इन क्रांतिकारी, वीर क्रांतिकारियों के साहस की वजह से।

आज़ाद एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी थी। उन्होंने ठान लिया था कि वे कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे और अंग्रेज़ों की गुलामी की हुकूमत से खुद को आखिरी सांस तक उन्होंने आज़ाद रखा। उन्होंने बेहद कम उम्र में ही अपनी जिंदगी को देश के नाम कर दिया और आखिरकार एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपने ही हाथों अपना जीवन देश के नाम किया और चले गए एक ऐसे देश जहां से संदेश या फिर चिट्ठी नहीं भेजी जा सकती है, ना ही वहां से आ सकती है। लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद के साहस की वजह से आज जो आज़ाद देश में हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसके बारे में हम कभी भी नहीं भूल सकते। और फिर एक बार आज के दिन हम इस वीर सैनिक को याद कर रहे हैं और हमेशा हमेशा उनकी कुर्बानी के लिए देश के लोग उन्हें सदैव याद करते रहेंगे। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को करते हैं समाप्त। सुन रहे थे आप बातों और गीतों के कार्यक्रम रसधारा को, आपकी रेडियो दोस्त शर्मिशा के साथ। और दोबारा बात होगी आपसे इसी जगह इसी चैनल पर, समय रहेगा ठीक 12 बजे का, लेकर आऊंगी दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम सुरभि। तब तक के लिए ट्यून रहिएगा चैनल संचेता के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने विभाजन को इतिहास का वो क्षण बताया जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 14 अगस्त 1947 का दिन इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक का गवाह है, जिसमें लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और अमानवीय पीड़ा सहनी पड़ी। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों को अपने घर, संपत्ति और प्रियजनों को छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ जारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नौकाओं पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा।

0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है और सीबीआई जांच तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग दोहराई है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल स्वियाटेक ने एलेना रायबकिना को सीधे सेटों में हराया। पुरुष सिंगल्स में अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बेन शेल्टन ने मॉन्ट्रियल में अपने हमवतन खिलाड़ी ब्रेंडन नाकाशीमा को हराकर खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The President's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashvani. It will also be telecast on all the channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashvani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. Prime Minister Narendra Modi has remembered the courage of all those who were impacted by partition. In a social media post, Mr. Modi termed the partition as a moment in history that tore apart several lives, where families were uprooted, loved ones were lost, and immense suffering was endured. Services of the Delhi Metro will commence from all terminal stations across its network at 4 a.m. on Independence Day. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, said that the decision has been taken to facilitate the movement of special guests, invitees and the general public attending the Independence Day celebration. The DMRC said that the metro services will operate at a 30-minute frequency on all lines until the commencement of regular revenue services as per the scheduled timetable for the day. The Lal Qila, Jama Masjid and Delhi Gate metro stations are the nearest stations to the Independence Day celebration venue. Delhi government has approved 20% horizontal reservation for ex-Agniveers in direct recruitment to fire operator posts in Delhi Fire Services and warder and matron posts in prison department. The Home Department order also provides age relaxation for eligible candidates. It fits in with the policy of the Government of India for rehabilitation of ex-Agniveers. Union Home Ministry has already reserved 50% of the posts at the constable general duty and rifleman level in all the central armed police forces, CAPFs and Assam rifles for ex-Agniveers. Union Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh has paid homage to all those who lost their lives in the partition and to those who struggled against the atrocities on Partition Horrors Remembrance Day. In a social media post, Mr. Shah said that the day of 14th August 1947 stands witness to one of the most brutal chapters in history, in which millions of people had to lose their lives and endure inhuman suffering. He added that tens of millions were forced to abandon their homes, property and loved ones and become displaced. Mr. Shah also said that on the Partition Horrors Remembrance Day, the Modi government is conveying the memories of the tragedy to the youth so that the forces seeking to divide the country again can never succeed. In West Bengal, three children aged between 4 and 11 have been killed.

0: 267.4 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता, आप जिस पर सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। आज के अंजुमन प्रोग्राम में आपके साथ है आपकी मेजबान सूफिया शीरी। आप सबों को सूफिया का पुरखलूस आदाब। स्टोरी की घड़ी में वक्त हुआ है 10:16 यानी कि इशारा है अंजुमन प्रोग्राम की पहली पेशकश आईना का। हिंदुस्तान में गरीब और बेघर खानदानों को बुनियादी सहूलियत फराहम करना हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है। इसी मकसद के तहत हुकूमत ने देही इलाकों के गरीब खानदानों को पक्का मकान फराहम कराने के लिए इंदिरा आवास योजना शुरू की थी। आइए आज आईना में बात करते हैं इंदिरा आवास योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। इसका बुनियादी मकसद गरीब देही खानदानों, खुसूसन बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले खानदानों को पक्के मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम करना था। इस स्कीम के मकासद में गरीब खानदानों को महफूज और बाइज्जत रहायश फराहम करना, बेघरी को कम करना, देही इलाकों में मियार जिंदगी बेहतर बनाना और माशरे के कमजोर तबकात को बुनियादी रहायश फराहम करना शामिल था। 2016 में इंदिरा आवास योजना को अज़ीज़-ए-नौ मुनज़्ज़म करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का नाम दिया गया। इसके तहत देही इलाकों के बेघर खानदानों को और ऐसे खानदानों को पक्का मकान फराहम करने का हदफ रखा गया जिनके पास मुनासिब रहायशी मकान नहीं है। मुस्तहक़ीन के इंतखाब में सामाजिक इक़्तिसादी मियार और सरकारी सर्वे की इदाद को व शुमार को अहमियत दी जाती है। इंदिरा आवास योजना ने हिंदुस्तान के देही गरीबों को रिहायश फराहम करने की बुनियाद मजबूत की, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने इसी मकसद को मजीद वसी और मनज़म शक्ल दी। ऐसी स्कीमें उस वक्त ज्यादा मौसर साबित होती हैं जब मुस्तहक अफराद का शफाफ इंतखाब हो। आपको भी हमको भी इस समत काम करनी है कि जिनको नहीं पता हमें इस योजना के बारे में, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करनी है, जागरूकता पैदा करनी है। अभी आप आईना में समाप्त फरमा रहे थे इंदिरा आवास योजना।
1: जश्न आजादी ने वो जोश

रखा है जश्न आजादी ने, वो जोश जगा रखा है। हमने घर घर में तिरंगे को लगा रखा है, हमने घर घर में

है उड़ान उसकी कुछ ऐसी के जमी क्या यारो, चांद तारों पे कदम अपना जमा रखा है, चांद तारों पे कदम अपना जमा रखा है। शेर के अमन की प्यार की जुर्रत की अलामत है ये, अमन

इस तिरंगे पे हजारों ने लुटाई है जा, इस तिरंगे पे हजारों ने लुटाई है जा, जिनके अफसानों ने दुश्मन को डरा रखा है, जिनके अफसानों ने दुश्मन को डरा रखा है, इसके लहराने पे मौसम का असर होता नहीं, इसने हर शख्स को हैरान बना रखा है, इसने हर शख्स को हैरान बना रखा है, ख्वाब आंखों में लिए हमने तिरंगा अख्तर, ख्वाब आंखों में लिए हमने तिरंगा अख्तर, अपने एहसास की दुनिया में सजा

0: जी हाँ हाज़िर सामीन, तिरंगे का झंडा ऊंचा रहे हमारा, और इस तिरंगे को, इस तीन रंग को, इसी तरह से हम उसकी इज्जत वक़ार को संभाले रखें। हर घर तिरंगा, इसे कभी ना भूलें। हमें हर घर, हर खिड़की, हर दरवाजे पे तिरंगे को लहराना है, क्योंकि इस तिरंगा लहराने की, इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने, हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जानें तक कुर्बान की हैं। ये तिरंगा, यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है, इसकी भारी कीमत हम भारतीयों ने चुकाई है। और इस तहरीक आज़ादी को शोला बनाने में शुराए कराम ने अदब के जरिया एक नुमाया किरदार अदा किया है। तो चलिए समाज फरमाते हैं रिसर्च और स्क्रिप्टेड बाय तलत सलाउद्दीन की एक ऐसी खसूसी फीचर, आज़ादी की राह में उर्दू शोरा का किरदार। आपको मैं ये बता दूँ कि आप प्रोग्राम रिपीट यानी मुकर्रर समात फरमा रहे हैं, लेकिन यह प्रोग्राम अपनी मकबूलियत की इंतहा पर है, जिसकी वजह कर हम दोबारा इस प्रोग्राम को आपकी समातों की नज़र कर रहे हैं। वाजे कर दूं, रिसर्च और स्क्रिप्टेड बाय तलत सलाउद्दीन।
1: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में।

0: इनके जोश वलोला और इनके कौमी नजरिया को तहरी तौर पर भी मंजर आम पर आने नहीं दिया, लेकिन उर्दू के जो अखबारात व रसायल हिंदुस्तान में मौजूद थे, मुजाहिदीन के नजरियात और उनकी जद्दोजहद को मुस्बत अंदाज में अहाता तहरीर में ला रहे थे। बहादुर शाह जफर अपने काफिले के साथ 1858 में रंगून पहुंचे। उन्होंने अपने एहसासात को शेरी अंदाज में बखूबी डाला है कि
1: न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सके, जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार हूं। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजा से उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हूं, न किसी के आंख का नूर, न किसी के दिल का करार हूं।
0: 1850 की अशरे तक बरतानवी फौज टीपू सुल्तान जैसे हुरियत पसंद मुस्लिम हुक्मरानों का, जिन्होंने गैर मुल्की ताकत के सामने झुकने से इनकार कर दिया था, यहां तक कि फरवरी 1856 में अवध के नवाब को सिर्फ इसलिए माजूल कर दिया गया कि वो वाजिद अली शाह जंग वजदाल के बजाय इल्म अदब शेर व नगमा व मौसीकी का रसिया था। वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल के परपोते इरफान मिर्जा ने तारीखी पहलू का हवाला देते हुए कहा कि
2: अंग्रेजों ने जब लखनऊ को नरगे में लिया था तो उस वक्त वाजिद अली शाह के महल में कोई मर्द नहीं था जो बाहर निकलकर अंग्रेजों का खुल्लम खुल्ला मुकाबला कर सकता। ये सरबलंदी और इम्तियाज बेगम हजरत महल और उनके कमसिन लड़के बिरजिस कदर के हिस्से में आया। ये हजरत महल की पहल थी जिसने हिंदुस्तान में लखनऊ की अना को बाकी रखा। हजरत महल ने बिरजिस कदर की ताजपोशी जो की वहां लखनऊ में इतनी दिलेराना अंदाज में, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे राइट अंडर द नोज ऑफ द ब्रिटिश हाई ब्रोज, शी करोनेटेड बिरजिस कदर।
0: इरफान मिर्जा जो मटिया ब्रुज के बाशिंदे हैं और ये वही सरजमीन है जहां आखिरी नवाब वाजिद अली शाह सुपुर्द खाक है, उन्होंने लखनऊ के शायर का हवाला देते हुए कहा कि
2: लखनऊ है राह आजादी के मीरे कारवां, लखनऊ है हिंद की तारीख के अजमत निशान, मुस्तकिल तेरे इरादे मुस्तनद तेरी जबां, हाँ जरा फिर आज दोहरा दे अवध की दास्तां, जिक्र है उस अहद का जब इंतशार आया न था, मगरबी तहजीब का परवरदिगार आया न था। फिर एक और शेर है मंदिरो, देखिए ये गंगा जमनी तहजीब की तरफ इशारा है जिसके लिए लखनऊ मशहूर था कि मंदिरो मस्जिद में हर जानिब खुदा की याद थी, माँ दियत थी रूहे वफा आजाद थी। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों से जब जंग शुरू हो गई, बेगम हजरत महल की और लखनऊ की अदबी सड़कों पर खून बहा, और उसके बाद जब हजरत महल की चिन्हट में जिसे कहेंगे उस वक्त शिकस्त हुई लेकिन आज वो फतेह के नाम से याद किया जाएगा उस वाक़े को, तो उस सिलसिले में जो अशआर है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। मर गए सब बावफा, दिल हो गया आखिर निढाल, दस्त व बाजू शल हुए आया हुकूमत पर जवाल, हर तरफ नजरों ने जब देखा अदावत का चलन, मल्क ए हजरत महल ने कर दिया तरके वतन।
0: 1857 से 1947 के हसूल आजादी तक का दौर तारीख हिंद ही के लिए नहीं बल्कि तारीख आलम में भी बड़ी बुनियादी अहमियत का हामिल है। इस 90 साल के अरसे में हो रही दुनिया ने जिस सरत और तेज रफ्तारी से तरक्की हासिल की है, इसकी मिसाल इससे कबल पूरी इंसानी तारीख में कभी नहीं मिलती। चुनांचा इस मुद्दत की हमागिर अहमियत के पेश नज़र उर्दू में इस दौर छोटी बड़ी मुख्तलिफ अदबी तारीखें भी लिखी गई हैं। इन अदबी जायजों में शोरा और उनके अदबी रुझानात को वाजा करने के लिए उनके दौर की सियासी और समाजी तहरीकात और उनकी अदब पेशे मंजर का तस्करा वक्तन फोक्तन पेश किया जाता रहा है। जंग अगर नाकाम हो जाए तो बगावत, और बगावत कामयाब हो जाए तो जंग कहा जाता है। 1857 अंग्रेजों ने बगावत का नाम दिया। इसी साल मुगलिया सल्तनत का टिमटिमाता हुआ चिराग गुल हो गया और गालिब को कहना पड़ा, एक शमा रह गई थी वो भी खामोश है। इस जिम में उर्दू अखबार के एडिटर और

0: सचर अफरोज आलम ने कहा कि
1: मिर्जा गालिब की मतलब मकतूबात भी आप पढ़ें तो वो बिल्कुल वो मिल जाएंगी कि अंग्रेजों ने किस तरीके से यहाँ के रोसा नउमरा और लोगों को यहाँ तक के आवाम तक को जो है वो बेरोजगार कर दिया। जो शाह वली अल्लाह मोहदी दहलवी जो है इस पर बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी थे और यहाँ के जो हुक्मरान भी थे जो मुगल का बिल्कुल आखिरी दौर है उनमें भी जो है जज्बे जिहाद बाकी नहीं रहा था, तो शाह वली अल्लाह मोहदी दहलवी ने जिहाद की रूह फूकने की जो है उन्होंने कोशिश की और अंग्रेजों को इस मुल्क से निकालने के लिए अवाम को जगाने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। शाह अब्दुल अजीज मोहदी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का दौर आता है जिन्होंने बिल्कुल जो है ऐलान जिहाद जो है उन्होंने शाय करवाया कि अब ये मुल्क जो है दारुल इस्लाम नहीं बल्कि दारुल हरब रहेगा।
0: मेरा ख्याल है कि हर वतन परस्त को इस बात को तस्लीम करना ही चाहिए, जब भी आज़ादी की बात होगी उर्दू शायरों और उनके कलाम के बगैर बात मुकम्मल नहीं हो सकती। आज़ादी हिंद में हमारे शोरा का बड़ा अहम किरदार रहा है, उनके कलाम ने आज़ादी की जंग में बहुत ही खास रोल निभाया है। यहाँ फिर से सरफरोशी की तमन्ना का जिक्र करना चाहूंगी कि बिस्मिल अजीम आबादी की गजल सरफरोशी की तमन्ना पर काफी गुफ्तगू होती रही है। हर तहरीक, हर इनकलाब और हर दौर में नई रिवायत को लाने में इस शेर का सहारा लिया गया है। बिस्मिल के अलावा मिजाज, मखदूम, जज्बी, सरदार जाफरी, जोश मलियाबादी, फैज अहमद फैज, अलामा इकबाल, परवेज शायरी वगैरह के कलाम में हमें हुब्बुल वतनी के कई अशार और लाजवाब नज़में देखने को मिलती हैं। श्री शिक्षार्थन कॉलेज की प्रोफेसर और सदर शुबाए उर्दू शाहीन परवीन ने उर्दू शोराओं के किरदार पर एक तायराना नज़र डालते हुए हमें बताया कि
2: 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के वक्त गालिब, ज़ौक और मोमिन उर्दू शायरी के आसमान पर तारे टाक रहे थे। 1947 ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते उर्दू जबान व अदब में हाली और दूसरे अदीबों शायरों ने भरपूर साथ दिया और इस बात को वाजा किया कि महात्मा गांधी की खादी की तहरीक भी इसी बात की तरफ इशारा करती है। उर्दू जबान हिंदुस्तान की तमाम लोगों की मुश्तरका जबान रही है। तहरीक आज़ादी की अगर जुबान थी तो वो दरअसल उर्दू थी। उर्दू जबान में नज्म व नसर दोनों ही मिलते हैं। गजल, शहर आसूब, मसनवी, कसीदा, कतात, रुबाई वगैरह में इन ख्यालात की रोनमाई हुई है। मीर का शेर देखें। रंग उड़ चला चमन में गुलों का क्या नसीम, हम तो रोजगार ने बेपाल पर किया।
0: अरबों ने यूरोप में अपनी तीन ऐसी इजादें राइज की जिनमें से हर एक ने दुनिया में अजीब इनकलाब बर्पा कर दिया। अव्वल नाखुदाओं की कुतुब नमा जिसकी बरकत से यूरोप दुनिया के किनारे तक फैल गया। दोम बारूद जिसने जर्रा बख्तर पहनने वाले नाइटों के इक्तदार का खात्मा कर दिया। सोम कागज जिससे अशात व तबात का रास्ता साफ हुआ। कागज का रिवाज ने जो इनकलाब पैदा किया वो अहमियत में तबात की तरविज से कम ना थी। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने में हिंदुस्तान की उस वक्त की सहाफत का भी नुमाया हिस्सा रहा है। 1857 तक मुल्क में तकरीबन 450 अखबारा शाया होने लगे थे। नई सियासी, समाजी, इल्मी और अदबी अंजुमने कायम होने लगी थी। बर्रे सगीर हिंद व पाक की तहरीक में तहरीके मुजाहिदीन या वहाबी तहरीक अपनी बेमिसाल तहरीकी कुव्वत, तंजीमी सलाहियत, अवामी मकबूलियत, एसार कुर्बानी, जज्बा जिहाद अमल और दोरस असरात के लिहाज से एक इंतहाई अहम तहरीक रही है। ये तहरीक बैक वक्त मजहबी भी थी, सियासी भी और समाजी भी। तहरीकी मुजाहिदीन के बानी हजरत सैयद अहमद शहीद ने अपने मिशन का आगाज एक ऐसे वक्त में किया जबकि मिल्लत इस्लामिया हिंद के हालात इंतहाई नागुफ्ता बात हैं। सर सैयद अहमद खान जब दिल्ली के बुलंद मर्तबा अशखास का जिक्र अपनी किताब में करते हैं तो इसमें सिर्फ वहाबी रहनुमाओं को शामिल करते हैं बल्कि वहाबियों की दावत जिहाद के मजहबी तकद्दस की मुबालगा आमिज तारीफ भी करते हैं। यहाँ वो कहते

0: अभी सोने ना दिया। चुनांचा हुकूमत के इस जालिमाना रवैये को उस मुल्क ने सख्त नापसंद किया। उसी मौके पर अकबर अलाबादी ने ये पुरमानी गजल लिखी।
1: जुबा है नातवानी से अगर बंद, जुबा है नातवानी से अगर बंद, मेरे दिल पे नहीं माने के दर बदन, बया दरंज याराने नजर बंद, बया दरंज याराने नजर बंद, किया हमने भी अब मिलने का दर बंद। बुत मुश्रिक नहीं मोहताज सामान, कमरी जब नहीं क्या कमर बंद, कहूंगा कहूंगा मरसिया इस गम में ऐसा, खिले मानी दिखाए जिसका हर बंद।
0: उन्नीसवीं सदी के निस्फ और बीसवीं सदी के इब्तदाई जमाने को जबरदस्त तहरीकी दौर करार दिया जा सकता है। यही वो दौर है जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटी बड़ी मुख्तलिफ समाजी व मजहबी और सियासी तहरीकात ने अपने समाज और अपनी अपनी कौमों की जिंदगी के रुख बदल डालने में मसरूफ अमल थी। हिंदुओं की इस्लाही तहरीकें ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन वगैरह काबिले जिक्र रही हैं, जिससे समाज में बेदारी लाई, ब्राह्मणो समाज में शामिल होकर अपनी तख्लीकात से समाज में पैगाम व नजरियात की तबलीग दी। बंगाल के अदीब और शायरों की भी लंबी फहरिस्त है। रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र और इन दोनों की यहाँ राजा राम मोहन राय की फिक्र व अमल का गहरा असर नजर आता है। चकबस उर्दू शोरा का नाम खासा अहम है। उनकी शायरी के समाजी इस्लाही व इखलाकी कौमी रंग को जहाँ मगरबी अदब से आगाही और जज्बे हुब्बल वतनी का समर करा दिया जा सकता है, वो कहते हैं, कौम का गम मोल लेकर दिल का ये आलम हुआ, कौम का गम मोल के दिल का ये आलम हुआ, याद भी आई नहीं अपनी परेशानी मुझे, दिल की तस्कीर बख्शा फैज व रूहानी मुझे, जब कौम हो गया नक्श सुलेमानी मुझे, खुद परस्ती मिट गई कदर मोहब्बत बढ़ गई, मातम अहबाब है तालीम रूहानी मुझे। इस जिम में मोहम्मद अली लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन अनवरुल हक ने नजम का हवाला देते हुए हमें कहा कि
2: फैज अहमद फैज आज़ादी से कब वो हिंदुस्तान की तरक्की पसंद तहरीक का हिस्सा था। इनकी शायरी मजदूरों के हकूक व जुल्म सितम के खिलाफ उठने वाली आवाजों से भरी पड़ी। फैज की मशहूर जमाना नज्म हम देखेंगे एहतजाजी तहरीकों का नारा बनी। साहिर लुधियानवी ने फिल्मों और इनकलाबी मुशायरों के जरिया अवाम में आज़ादी का शऊर भरा। मजरू ने तरक्की पसंद तहरीक के जरिया आज़ादी, मुसावात और इंसाफ के नारे को बुलंद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो खिलाफत तहरीक और आज़ादी के नुमाया रहनुमा थे, इनकी नज़मों ने मुसलमानों को आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल होने पर उभारा। उर्दू शायरी ने हिंदुस्तान की तहरीक के आज़ादी को न सिर्फ जज्बा दिया बल्कि आवामी शऊर, हुब्बुल वतनी और बगावत का जरिया भी बनी।
0: बकौल आल अहमद सरवर, अदीब और शायर वक्ती सियासत में बह सकता है मगर वो सियासी तहरीकात के तूफान में तिनके की तरह नहीं बह जाता, वो दरियाओं का रुख मोड़ता है और मौजों को अपने काबू में लाता है, वो तूफान इनकलाब के लिए फिजा तैयार करता है, वो माजी का अमीन, हाल का इशारिया और मुस्तकबल का पैम्बर होता है, वो दिलों की गहराई में उतरता है। शोरा में मुनीर शिकवा आबादी, राम प्रसाद बिस्मिल और इश्फाकुल्ला खान जैसे मुजाहिद और शहीद शोरा ने इस्लाह से आगे बढ़कर जज्बे हुब्बुल वतन और एहसास गुलामी को जब नए अंदाज से उभारा तो उन्हें कई आजमाइशों से गुजरना पड़ा। मुनीर शिकवा आबादी कैद करके बांदा भेजे गए और इलाहाबाद जेल में और फिर कलकत्ता पैदल दौड़ाए गए। चंद शायर उन्हीं के लफ्जों में मुलाखता फरमाए। जो अलाहाबाद में गुजरे सितम है फजू तकरीर से तहरीर से, फिर हुए कलकत्ता को पैदल रवा, गिरते पड़ते पाँव की जंजीर से, हथकड़ी हाथों में बेड़ी पाँव में, नातवा तरक्की की तस्वीर से, बेहवास बेलिबास व बेदयार, बेहवास बेलिबास और बेदयार, दिल गिरफ्ता चूर चरख बैर से।
3: छोड़ूंगी ना मैं हिंद की तारीख फिजा को, छोड़ूंगी ना मैं हिंद की तारीख फिजा को, जब तक ना उठे ख्वाब से मर्दाने गिरा ख्वाब।
0: इकबाल का ये शेर अब तो मुहावरे की तरह मशहूर है। मिजाज लखनवी को अपने माहौल की गुलामी व पस्ती का शदीद एहसास था। उनकी नज़म आवारा में उसकी झलक खूब मिलती है। अल्लामा इकबाल जो उर्दू के तहरीकी शायरी का इमाम कहा जाता है तो बेजाना होगा। اردو شعرا کا ذکر ہو اور فیض احمد فیض

0: तरक्की पसंद शायर का जिक्र ना हो तो ये नाइंसाफी होगी। उन्हें जोश पर फौकियत हासिल है, उनके यहाँ तरक्की पसंद नजरिया का अदराक वाजा है, तभी तो वो कहते हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग।
1: मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर ने यूं हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा।
0: शायरी मशरिक इलामा इकबाल ने भी कई नज़्में लिखी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलिस्तां हमारा।

0: मंदिर मस्जिद गिरजा तेरे तेरे हैं गुरुद्वारे, मंदिर मस्जिद गिरजा तेरे तेरे हैं गुरुद्वारे, फिर तेरे घर में ये कैसे कदम कदम बंटवारे। एक ही तेरा रास्ता जिसमें मिले हरम वो दैर, एक ही तेरा रास्ता जिसमें मिले हरम और दैर, कबीरा सबकी मांगे खैर।
1: ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। मुख्तसर ये कि उर्दू के शोरा ने हिंदुस्तानियों के अंदर तहरीके आज़ादी को तेज से तेजतर करने का जज्बा पैदा किया और बहुत से शोरा तो आज़ादी के मतवालों के साथ कदम से कदम मिलाकर उस वक्त तक चलते रहे जब तक मुल्क आज़ाद ना हुआ।

0: रहते हैं। अगर ये सूरज ना हो तो फिर ये रोशनी भी हम तक ना पहुंच पाए। इसके अलावा मौजूदा दौर में हम लोग देखते हैं कि बल्ब का ईजाद ऐसा ईजाद है जिसमें आप रातों को भी दिन में तब्दील कर सकते हैं, है ना। दिन में रोशनी सूरज से मिलती है और रातों में क्या है, ये बल्ब उजाले करते हैं
1: जी।
0: ठीक है, ये बल्ब उजाले जो करते हैं इसमें हम लोग रोजमर्रा अपने डेली लाइफ में बहुत सारे बल्ब भी देखते हैं। आज के दौर जदीद में सबसे अहम लाइट अभी हमारे साथ जो है एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड। बच्चे इससे वाकफियत रखते होंगे, बहुत सारे बच्चे अपने एतराफ़ में देख रहे हैं कि हम लोग जो है इन एलईडी लाइट से घिरे हुए है ना। ये लाइट इमिटिंग डायोड, ये रोशनी पैदा करने वाले छोटे छोटे डायोड है, दिन रात को उजालों में बदल देते हैं। ये रोशनी जो है इसके अंदर एक खसूसियत है, वो ये है कि रोशनी हमेशा जो है एक स्ट्रेट लाइन में सफर करती
1: जी।
0: तो उसको एक तजर्बा के जरिया भी हम समझ सकते हैं कि रोशनी एक स्ट्रेट लाइन में सफर कर रही तो कैसे करती, कि बच्चे जो है अगर खुद से चाहे तो इस तजर्बे को घर में भी कर सकते हैं। बड़ा आसान सा तजर्बा है, इसके लिए दो कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी और एक मोमबत्ती चाहिए, है ना, कैंडल। इस कैंडल को एक जगह कहीं मेज पर रख दे और एक कार्डबोर्ड में सुराख कर लें और एक कार्डबोर्ड में बगैर सुराख किए उसमें सादा सफेद कागज लगा दें। अब वो कागज लगाकर एक जगह नस्ब कर दें और जिसमें सुराख किया हुआ कार्डबोर्ड है उसको जो कैंडल है पहले कैंडल को जलाए। कैंडल को जलाने के बाद उसके ठीक समांतर सीध में उसको सीधा हम रखें। उस सुराख से जो रोशनी निकलेगी उसकी स्वाएं जो है, उसकी रेज जो है, उस कार्डबोर्ड जो सफेद जिस पर स्क्रीन की तरह वो काम करेगा उस पर पड़ेंगी। अब ये कार्डबोर्ड का अगर हम उलट के रख दें और रोशनी ना आने दें तो फिर देखेंगे कि हमारा ये जो कार्डबोर्ड जो है इस पर रोशनी की स्वाएं नहीं पड़ती, जिससे ये साबित होता है कि रोशनी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में सफर करती। स्ट्रेट लाइन में अगर ये सफर ना करती तो फिर हम तक ये रोशनी की जो है सूरज से जो मिलती है उसमें बहुत सारे और भी मजहर होते हैं, जैसे रेडिएशन के थ्रू हमारे जो घर में देखते हैं हम छतों पर क्या है कि अपने कपड़े फैला दिए और ये रोशनी आकर हमें वो कपड़े सुखा कर चली जाती है। तो कभी तो सोचा होगा कि ये कौन सी चीज़ है जो ये काम कर रही है, ये तो रोशनी है जो रेडिएशन के थ्रू हमारे यहाँ पहुँचती है। ये रेडिएशन भी क्या है कि रोशनी का एक बहुत ही अहम फेनोमेना है। तो इस तरीके से हम तजर्बात के जरिए से हम समझ सकते हैं बहुत सारे मजहर कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोशनी का एक और फेनोमेना है जिसको हम लोग इनकास या रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो अपना रिफ्लेक्शन, अपना अक्स देखते हैं, अपना इमेज देखते हैं, है ना। ये जो इमेज जो आप देख रहे हैं ये किसी आईने में आप खड़े होंगे तो देखिएगा कि आपके हूबहू आईना पर जितना आपका अक्स बना है, जितना आपका साइज है, उसी हिसाब से आपको वो आईना दिखा रहा है। लेकिन हम लोग जो है साइंस खेल खेल में, जब हम साइंस सिटी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे जो है मैजिक मिरर है। वो मैजिक मिरर क्या है कि उस मैजिक मिरर में एक जगह ऐसा मिरर भी है जहाँ बच्चे खड़े होते हैं तो अपने आप को देख रहे हैं कि हम तो छोटा हो गए, मेरा साइज छोटा हो गया
1: जी। बिल्कुल, बच्चे बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं इन चीजों में
0: जी जी,
1: जहाँ खास तौर पे मैजिक मिरर और लाइट। तो ये बच्चे समझते नहीं है कि ये लाइट ये है काम कर रहा है या क्या चीज है, बस उसे उन्हें क्या है दिलचस्पी ले रहे हैं, बस शक्ल बदल जा रही है तो उन्हें मजा आता है। तो ये किस तरह से होता है आप जरा से बताएं
0: जी। ये जो फेनोमेना है ये लाइट का बहुत ही अहम फेनोमेना जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं और रोशनी का इनकास है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब है आप डिफरेंट तरह के बहुत सारे मिरर हैं, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो आईने के सामने खड़े होते हैं वो प्लेन मिरर है, और जो मैजिक मिरर वगैरह जो होता है उसमें हर तरह के मिरर इस्तेमाल होते हैं जिसमें कॉनकेव भी है, कॉनवेक्स भी है। तो हमारे बच्चे जो इसीलिए दिलचस्पी लेते हैं कि हम जब प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे तो हमारा जो अक्स बनेगा, इमेज बनेगा, साधारण सा जो आपका हाइट है, जो आपके कदोकामत है उसके हिसाब से आपके इमेज बनेंगे। और जब हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स के सामने खड़े होते हैं तो यहाँ से मैजिक शुरू होता है कि बच्चों को अगर हम कॉनकेव मिरर के सामने खड़ा कर दें तो वो उनका सर नीचे और पैर ऊपर हो जाएगा
1: जी।
0: और धीरे धीरे धीरे धीरे और उनको मिरर से करीब किया जाए तो वही कॉनकेव मिरर में अब उनके इमेजेस जो हैं और छोटे होते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा

0: कि इमेज फिर उल्टा होकर सीधा हो जाएगा। ये कॉनकेव मिरर की खसूसियत है कि भाई कॉनकेव मिरर में होता क्या है कि एक पोजीशन ऐसा होता है जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप दूर खड़े हैं टुवर्ड्स इन्फिनिटी तो आपका जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा, जिससे बच्चों का क्या होता है कि सर नीचे और पैर ऊपर ऊपर रह जाता है। तो बच्चे उसको बड़ा मुसर्रत के साथ और खुश होकर देखते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। फिर ये धीरे धीरे धीरे धीरे जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आते हैं उस मिरर का, तो उनका अक्ष का साइज बिल्कुल बराबर हो जाता है लेकिन उल्टा
1: उल्टा हो जाता है।
0: उल्टा होगा माने सर नीचे और पैर ऊपर। और फिर धीरे धीरे जब वो और करीब होते जाएंगे मिरर से तो ऐसा ही अमल होते रहता है। एक वक्त ऐसा आता है जब उनका अक्ष नजर ही नहीं आएगा उनको, वो होता है जब उनका एक फोकस होता है जगह कॉनकेव मिरर का, वो फोकस पर जैसे ही वो आ जाएंगे तो उनको उनका अपना अक्ष नजर नहीं आएगा गर्चे वो मिरर के सामने खड़े हैं। अब वो उनका अक्ष बनेगा इन्फिनिटी पर जिसकी वजह से वो उनको नजर नहीं आएगा। ये मिरर मैजिक ये जो है कॉनकेव मिरर की बड़ी अहम खासियत है। इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर होता है तो कॉनकेव मिरर का हम लोग जो देखते हैं, आप कभी डेंटिस्ट के पास जाइएगा तो देखिएगा डेंटिस्ट जो मिरर इस्तेमाल करते हैं दांतों को देखने के लिए वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो कॉनकेव मिरर है आपका डेंटिस्ट के लिए क्या होता है कि वो जब फोकस और पोल के दरमियान अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज लार्ज बनता है। तो ये बच्चे को अगर हम फोकस और पोल के दरमियान खड़ा कर देंगे तो वही बच्चे अपना अक्ष देखेंगे
1: तो बड़ा
0: हो गया,
1: बड़ा तो दिखेंगे,
0: उनको बड़ा नजर आएगा, है ना
1: जी, तो साइज बड़ा दिखेगा,
0: साइज बड़ा दिखेगा। तो ये डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर। इसी तरह जो है एक कॉन्वेक्स मिरर है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला है कि भाई गाड़ियों में जो है जो रियर व्यू के लिए मिरर इस्तेमाल करते हैं जितने भी व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो आपका किसी तरह का भी व्हीकल हो, बाइक हो, बच्चे बस पर हो या किसी तरह का, तो उसमें जो मिरर इस्तेमाल होता है वो मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये कॉन्वेक्स मिरर में क्या है खसूसियत कि इसमें जब भी इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा, चाहे वो आप जितने करीब हों चाहे दूर हो
1: जी।
0: और इमेज का साइज जो होगा हमेशा छोटा बनेगा, कभी बड़ा नहीं बन सकता। ये इसकी
1: खासियत
0: है कि कॉनकेव मिरर में क्या है कि आपको छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा सीधा बनेगा और
1: छोटा
0: बनेगा। और जो इमेज बनते हैं तो इमेज भी दो तरह का होता है, एक रियल इमेज एक वर्चुअल इमेज। तो इस कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगा। तो इस तरह से बच्चों को हम लाइट के थ्रू बता सकते हैं कि जो हमारा बच्चा जो है किस तरीके से ये लाइट में ये फेनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े तो इसमें मिरर मैजिक वगैरह को अच्छे से समझ पाए।
1: जी
0: ठीक है,
1: तो ये कोशिश रहेगी कि बच्चों को और भी मज़ेदार चीज़ें आप सिखाएं। लाइट के ज़रिए आपने बहुत कुछ बेहतरीन बातें बताई जो बच्चों को समझ में आया होगा और हमारे सामीन भी समझे होंगे जो पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं और नहीं भी हैं। तो एक चीज़ है जैसे कार के बारे में आपने समझाया और कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के बारे में समझाया, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है और समझ में आया होगा सामीन को हमारे। तो आपने आज बहुत बेहतरीन चीज़ें समझाई लाइट के बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: आप समर्पण फरमा रहे थे साइंस खेल खेल में, मौजूद था लाइट यानी कि रोशनी। मुश्ताक अहमद साहब से बातें कर रही थी, गुफ्तगु में हिस्सा ले रही थी शाइस्ता नाज।
3: जश्न आजादी ने वो जोश जगा रखा है, जश्न आजादी ने वो जोश जगा रखा है, हमने घर घर में तिरंगे को लगा रखा है, हमने घर घर में

रो है उड़ान उसकी कुछ ऐसी के जमीन क्या यारो, चांद तारों पे

0: कदम अपना जमा रखा है, चांद तारों पे कदम अपना जमा रखा है।
1: जी हाँ सामीन, दुनिया तो क्या, हमने तो चांद सितारों पर भी अपना तिरंगा लहरा दिया है। और लेकिन याद रहे कि घर घर तिरंगा, हर खिड़की दरवाजे पर तिरंगा, और सिर्फ तिरंगा, सिर्फ घर घर में नहीं, दिलों में भी तिरंगा। और तिरंगा के तीनों रंग का मतलब समझना और से निभाना जरूरी है। इसी पैगाम के साथ आपसे विदा लेती है आपकी मेजबान सूफिया शीरी, लेकिन आपको छोड़े जा रही हूँ मैं शैनी चैटर्जी के साथ।

0: स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 12:01। आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। शुरू करते हैं दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम सुरभि, और आज के इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं आपकी रेडी दोस्त शर्मिशा के साथ।
1: भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
0: सुरभि कार्यक्रम के पहले पायदान की ओर रुख करते हैं जिसका नाम है चर्चा है, और आज चर्चा है में हमारा विषय है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। 14 अगस्त 1947, ये वो तारीख है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। एक तरफ देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिल रही थी तो दूसरी तरफ इसकी कीमत देश के विभाजन के रूप में मिल रही थी। विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोग बेघर हो गए। उन्हें रातों रात पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। कई लोग तो ऐसे भी रहे जिन्हें आजादी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। भारत के लिए ये विभाजन किसी विभीषिका से कम नहीं थी, इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 1921 को ये ऐलान किया कि हर साल अब 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस अर्थात पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। विभाजन के बाद लाखों शरणार्थी उन प्रांतों और शहरों में चले गए जहां से उनका पहले से कोई संबंध ही नहीं था। वहां की भाषा संस्कृति सब अलग थी। ऐसे में शरणार्थियों को अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी पड़ी। विभाजन के बाद पलायन कर रहे लोगों को न सिर्फ प्रचंड गर्मी झेलनी पड़ी बल्कि मूसलाधार बारिश में भी मीलों मील पैदल चलना पड़ा। लोगों का काफिला जिन गांवों से गुजरता था वहां के लोग भी उनके साथ जुट जाते थे। उनका काफिला करीब 10 मील से लेकर 27 मील तक

हुआ करती थी। कुछ लोग ट्रक, टांगों और बैलगाड़ियों से भी पलायन कर रहे थे। बंगाल में लोगों ने नाव का इस्तेमाल भी किया। लोगों पर हमले भी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने चलना जारी रखा। वे बिना आश्रय, स्वच्छता, भोजन या फिर पानी के बिना चल रहे थे। इसी दौरान कई लोगों ने थकावट, भूखमरी और बीमारी के चलते दम तोड़ दिया। विभाजन का दर्द आज भी लोगों को है। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 14 अगस्त 1947 का दिन अब किसी भारतवासी को न देखना पड़े। विभाजन की विभिषिका में अपने प्राण गंवाने वाले और विस्थापन का दर्द झेलने वाले लाखों भारतवासियों को शत शत नमन। चर्चा है कार्यक्रम आज यहीं तक। बात हो रही थी पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे।

12 बजकर 13 मिनट सुरभि कार्यक्रम के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं अगले पायदान की ओर, जिसका नाम है पहल। और पहल में आज का हमारा विषय है पीएम आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक बड़ी योजना है। इसका मकसद देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्का घर देना है। ये योजना दो भागों में बांटी गई है, ग्रामीण गांवों के लिए और शहरी शहरों के लिए। शहरी योजना 2.2 की अगर बात करें तो हमारे शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मकान बनाने या फिर खरीदने के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। इसके तहत सहायता राशि या फिर ब्याज पर छूट मिलती है। इसके अलावा ग्रामीण योजना की अगर बात करें तो इसमें मैदानी इलाकों में घर बनाने के

के लिए पहाड़ी, इसके साथ साथ पहाड़ी या फिर कठिन क्षेत्रों के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है। योग्यता की अगर बात की जाए तो परिवार के पास भारत में किसी भी पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर, कम आय और मध्यम आय वर्ग के लोग इसके पात्र हैं। जरूरी दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण के अलावा जमीन के दस्तावेज की जरूरत होती है। पहल आज यहीं तक। बात हो रही थी पीएम आवास योजना को लेकर। रुख करते हैं फिल्मी गीत की ओर और इसी के साथ आज का ये सुरभि कार्यक्रम होता है यहीं पर समाप्त। जाने से पहले उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में ये फिल्मी गीत आप सभी सुनने वालों के लिए। ट्यून रहिएगा आकाशवाणी कोलकाता के साथ। बहुत जल्द बात होगी आपसे इसी जगह इसी चैनल पर किसी और दिन। तब तक के लिए ट्यून रहिएगा आकाशवाणी कोलकाता के साथ और सुन रहे थे दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम सुरभि।

0: राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने कहा कि समारोह में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा लाभार्थियों की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के अनमोल योगदान को मान्यता देने जैसा है। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी की FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। तमिलनाडु में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। तमिलनाडु पुलिस की अलग अलग इकाइयों ने आई फुल ड्रेस रिहर्सल की। संवेदनशील इलाकों में यातायात का मार्ग बदला गया है। स्वाधीनता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के आसपास आने जाने वाले यात्रियों के लिए यातायात संबंधी परामर्श जारी किया है। ये सुबह 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, अतिरिक्त समय लेकर चलें। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि यह दिन सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बलिग्राम इलाके से पुलिस ने 7 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत केंद्र में भेज दिया है। इन 7 को कल हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि वे कुछ महीने पहले भारत बांग्लादेश सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और बाद में काम की तलाश में दक्षिण भारत चले गए थे। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 261 अंक गिरकर 77,819 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,336 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams.

0: वहां सामग्री की पहली खेप भेजी और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
3: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी

0: में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह।
1: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
2: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1,00,000 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में कई सौ जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
3: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
4: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह

0: रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य के सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
1: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और सीआरपीएफ के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
2: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
1: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई हैं और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंदुझर जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंगा नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान सुनछेन संचयिता प्रचार तरंगे 297.6 मीटर अर्थात 1008 kHz मीडियम ওয়েভে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনবেন তবলা লহরা, শিল্পী সমীর চট্টোপাধ্যায়। শুনবেন রূপক তাল, হারমোনিয়ামে থাকছেন সনাতন গোস্বামী।

0: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজ মিডিয়াম ওয়েভে। শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় অধিবেশন। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় বিকেল 4:59 হয়ে 50 সেকেন্ড। একটু পরেই শুনতে পাবেন দিল্লি থেকে খবর।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी होगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
2: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल है। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदक की भी घोषणा की गई है। 664 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक देने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में

0: शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम लोगों की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के चमोली में एक जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंग ढहने की घटना पर शोक व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और मलबे के नीचे फंसे लोगों के सुरक्षित निकलने के लिए प्रार्थना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सुरंग में फंसे शेष लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। पीपलकोटी क्षेत्र में THDC के निर्माणाधीन सुरंग में मलबा और पानी भरने से फंसे करीब 22 लोगों में से 19 को बाहर निकाला गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज एक ग्राम रक्षा कोड VDG सदस्य की कथित तौर पर एक अन्य VDG सदस्य द्वारा झड़प के बाद गोली चलाने से मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और आगे की जांच जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन परिसर में अमृत उद्यान के ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण 2026 के उद्घाटन में भाग लिया। अमृत उद्यान आम जनता के लिए रविवार से अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले सेना के खिलाड़ियों से बातचीत की। सेना के खिलाड़ियों ने इस बार 8 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। President Draupadi Murmu will address the nation this evening on the eve of 80th Independence Day. The address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashvani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan, first in Hindi and then in English. This will be followed by the telecast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashvani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. The nation will celebrate the 80th Independence Day tomorrow. Prime Minister Narendra Modi will lead the celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Flower petals will be showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force. The unfurling of the national flag will be synchronized with the 21-gun salute. After the showering of flower petals, the Prime Minister will address the nation from the ramparts of the Red Fort. The grand event is set to commemorate 150 years of the enduring legacy of the national song Vande Mataram and celebrate the energy, aspirations and pivotal contribution of Yuva Shakti in driving India's journey towards Viksit Bharat by 2047. For the first time, Vande Mataram will be rendered during the celebrations at the Red Fort. Services of the Delhi Metro will commence from all terminal stations across its network at 4 a.m. tomorrow on the Independence Day to facilitate the movement of special guests, invitees and the general public. The services will operate at a 30-minute frequency on all lines until the commencement of regular revenue services as per the scheduled timetable for the day. President Draupadi Murmu today attended the opening of the Amrit Udyan Summer Annuals Edition 2026 at the premises of Rashtrapati Bhavan. Amrit Udyan will be open for the general public from Sunday to the 15th of next month. The garden will remain open from 10 a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. The Udyan will remain closed on all Mondays for maintenance. Entry to the garden is free for everyone. Visitors can book their slots online at visit.rashtrapatibhavan.gov.in. Booking of slots for a particular day will close at 10 a.m. on the previous day and there will be no on-the-spot booking available.

0: मीडियम में 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का यह संचेता चैनल है। स्टूडियो घड़ी में 5:21:45 हो रहे हैं। वक्त हो रहा है कार्यक्रम उर्वशी का।
1: अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।

आइए उर्वशी के सुरुचि कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे अलग अलग तरह के पकोड़े। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त रोशन मुरारका। भारतीय खान पान में पकौड़ों का अपना विशेष स्थान है। बारिश की ठंडी शाम हो, सर्दियों की सुबह हो, या घर में अचानक मेहमान आ जाए, गर्मा गर्म पकौड़े सभी को पसंद आते हैं। पकौड़े मुख्य रूप से बेसन, सब्जियों, मसालों या अन्य सामग्री से बनाए जाते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में पकौड़ों को बनाने का तरीका और स्वाद अलग अलग होता है। पकौड़े बनाने के लिए सामान्यतः बेसन में नमक, हल्दी, लाल मिर्च, अजवाइन, हरी मिर्च और अन्य मसाले मिलाए जाते हैं। इसमें विभिन्न सब्जियों या अन्य सामग्री को लपेटकर पकाया जाता है। आजकल पकौड़ों के अनेक नए रूप भी लोकप्रिय हो गए हैं। प्याज के पकौड़े। प्याज के पकौड़े भारत के सबसे लोकप्रिय पकौड़ों में से एक हैं। बारीक कटे प्याज को बेसन और मसालों के साथ मिलाकर छोटे छोटे पकौड़े बनाए जाते हैं। इन्हें चाय के साथ खाना विशेष रूप से पसंद किया जाता है। आलू के पकौड़ों को आलू को पतले टुकड़ों में काटकर बेसन के घोल में डुबोकर पकाया जाता है। बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम आलू के पकौड़े बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आते हैं। अब अगर पालक के पकौड़ों की बात की जाए तो पालक को बेसन और मसालों के साथ मिलाकर बनाए गए पकौड़े स्वादिष्ट होने के साथ साथ हरी सब्जी को भोजन में शामिल करने का अच्छा तरीका है। इन्हें हरी चटनी या दही के साथ परोसा जा सकता है। फूलगोभी के छोटे टुकड़ों को मसालेदार बेसन में लपेटकर पकाया जाता है। सर्दियों के मौसम में गोभी के पकौड़े विशेष रूप से लोकप्रिय होते हैं। पनीर के टुकड़ों को बेसन के घोल में डुबोकर पकाने से स्वादिष्ट पनीर पकौड़े तैयार होते हैं। इन्हें अक्सर हरी चटनी और टमाटर की चटनी के साथ परोसा जाता है। बड़ी हरी मिर्च को बेसन के घोल में लपेटकर बनाए जाने वाले मिर्ची पकौड़े विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं। इनके स्वाद में हल्की तीखापन और मसालों की खुशबू होती है। बैंगन के पतले टुकड़ों को बेसन में लपेटकर पकाया जाता है। इनका स्वाद मसालों और बैंगन की नरम बनावट के कारण अलग होता है। ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा भारत के लोकप्रिय नाश्तों में से एक है। ब्रेड के बीच में आलू या अन्य भरावन रखकर उसे बेसन के घोल में डुबोया जाता है। ये चाय के साथ बहुत पसंद किया जाता है। मूंग दाल के पकौड़े, पालक प्याज पकौड़े, कॉर्न पकौड़े बनाए जाते हैं। अब मिश्रित सब्जियों के पकौड़े के बारे में जान लीजिए। आलू, प्याज, गाजर, पालक, गोभी और अन्य सब्जियों को मिलाकर भी पकौड़े बनाए जाते हैं। इन्हें मिक्स वेज पकौड़ा कहा जाता है और यह स्वाद के साथ कई सब्जियों को एक साथ खाने का विकल्प देता है। भारत के विभिन्न राज्यों में पकौड़ों के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। राजस्थान में मिर्ची पकौड़ा, उत्तर प्रदेश और बिहार में प्याज एवं आलू के पकौड़े, बंगाल में बड़ी और सब्जियों से बने विभिन्न प्रकार के तले नाश्ते, महाराष्ट्र में कांदा भजी, गुजरात में भजिया तथा दक्षिण भारत में विभिन्न प्रकार के सब्जी आधारित पकौड़े लोकप्रिय हैं। पकौड़े भारतीय भोजन की ऐसी लोकप्रिय पहचान है जिनमें स्वाद, विविधता और परंपरा तीनों का सुंदर मेल दिखाई देता है। प्याज, आलू, पालक, गोभी, पनीर, मिर्च, ब्रेड, दाल और मिश्रित सब्जियों से लेकर आधुनिक प्रयोगों तक पकौड़ों की दुनिया बहुत विस्तृत है। गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू, चाय की प्याली और अपनों का साथ, भारतीय स्वाद और संस्कृति का यही तो है खास अंदाज। अभी आप सुन रहे थे सुरुचि में अलग अलग तरह के पकौड़ों के बारे में, और आइए अब चलते चलते कुछ फिल्मी नग में। सबसे पहले सुनते हैं लगान फिल्म से AR रहमान, श्रीनिवास और साथियों को। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत AR रहमान का है।

आज सुनते अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। गायक कलाकार हैं कैलाश खेर, उदित नारायण, अलका याग्निक और सोनू निगम। गीतकार समीर और संगीतकार अनु मलिक।

आइए उर्वशी कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं। फिल्म है वीर जारा, वह कलाकार लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रीता मजुमदार, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार मदन मोहन। इस गीत को सुनते सुनते आपके रेडियो वाले दोस्त रोशन मरारका को उर्वशी कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें। फिर मिलूंगा, नमस्कार।

0: from Bidhannagar South, Kolkata informs that Asha Malik, aged about 29 years, healthy build, height 5 feet 7 inches, color skin fair, mother tongue Bengali, is missing since 17th of July 2026. Special Superintendent of Police, CID, Missing Persons Bureau, West Bengal, informs that Swati Jha, alias Rani, aged about 18 years, medium build, height 5 feet 5 inches, color of skin fair, mother tongue Bengali, is missing since 15th of July 2026 from Bidhannagar South, Kolkata. Special Superintendent of Police, CID, West Bengal, informs that Raju Shaw, aged about 46 years, medium build, height 5 feet 6 inches, color of skin whitish, mother tongue Bengali, is missing since 14th of April 2026 from AJC Bose Road, Garden, Howrah. Jaimangal Roy from Domjur, Howrah, informs that Sneha Kumari, aged about 15 years, normal build, height 5 feet 2 inches, color skin fair, mother tongue Bengali, is missing since 27th of September 2023. Information regarding all the lost persons may be intimated to the officer in charge, Missing Persons Bureau, CID, West Bengal, Bhavani Bhavan, Alipur, Kolkata 700027. And that is the end of the announcement regarding the lost persons. And now, please stand by for the news to be relayed from Delhi in a short while from now.
1: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath main Mukesh Kumar. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर राष्ट्रध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
2: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदक की भी घोषणा की गई है। 664 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक देने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रवर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा ई रुपए का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में सरकार की ये महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल का

0: देश गरीबों के लिए सरकारी लाभार्थी योजनाओं से बिचौलियों को हटाना है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में वस्त्र क्षेत्र के समग्र विकास और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत करने से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने वस्त्र क्षेत्र के विकास में नई गति लाने के तरीकों के साथ साथ नवाचार, प्रौद्योगिकी, सतत विकास, निर्यात, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और फरीदाबाद पुलिस आयुक्त को जहरीली गैस से एक व्यक्ति की कथित मौत और अन्य के घायल होने की घटना पर नोटिस जारी किया है। घटना का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के अंदर जांच की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज एक ग्राम रक्षा गार्ड की एक अन्य गार्ड के साथ झड़प में मौत हो गई और दूसरा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले सेना के खिलाड़ियों से बातचीत की। सेना के खिलाड़ियों ने इस बार 8 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जुलाई महीने में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति 9.87% से घटकर 9.78% रह गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मुद्रा स्फीति में कमी का मुख्य कारण ईंधन और ऊर्जा दरों में कमी आना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. President Draupadi Murmu will address the nation this evening on the eve of 80th Independence Day. The address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashvani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan, first in Hindi and then in English. This will be followed by the telecast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashvani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. The nation will celebrate the 80th Independence Day tomorrow. Prime Minister Narendra Modi will lead the celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Flower petals will be showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force. The unfurling of the national flag will be synchronized with the 21-gun salute. After the showering of flower petals, the Prime Minister will address the nation from the ramparts of the Red Fort. The grand event is set to commemorate 150 years of the enduring legacy of the national song Vande Mataram and celebrate the energy, aspirations and pivotal contribution of Yuva Shakti in driving India's journey towards Viksit Bharat by 2047. For the first time, Vande Mataram will be rendered during the celebrations at the Red Fort. Services of the Delhi Metro will commence from all terminal stations across its network at 4 a.m. tomorrow on the Independence Day to facilitate the movement of special guests, invitees and the general public. The services will operate at a 30-minute frequency on all lines until the commencement of regular revenue services as per the scheduled timetable for the day. Today is Partition Horrors Remembrance Day. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh have paid homage to all those who lost their lives in the partition and to those who struggled against the atrocities on Partition Horrors Remembrance Day. In a social media post, Mr. Modi termed the partition as a moment in history that tore apart several lives, where families were uprooted, loved ones were lost, and immense suffering was endured. He also wished that the day deepens everyone's resolve to preserve harmony and brotherhood in the country and work collectively towards building a Viksit Bharat. 21 officials of the Central Bureau of Investigation, CBI, have been honoured with President's Medal for Distinguished Service and Medal for Meritorious Service on the occasion of Independence Day this year. President's Medal for Distinguished Service have been awarded to 6 officials. President Draupadi Murmu today interacted with a group of artists from IGRMS Bhopal South Central Zone Cultural Center and Sangeet Natak Academy at the Rashtrapati Bhavan. In a social media post, the president noted that the artifacts of these artists will be showcased at the Independence

मीडियम में 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का यह संचेता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 6:10:20 हुए हैं। आइए, वक्त हो रहा है हिंदी वार्ता का। आज का विषय है देश निर्माण और हमारी जिम्मेदारी। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त रोशन मुरारका। देश केवल भौगोलिक सीमाओं, नदियों, पहाड़ों और शहरों का नाम नहीं है। देश उन करोड़ों लोगों से मिलकर बनता है जो उसकी धरती पर रहते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और उसके विकास में योगदान देते हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल सरकार की नीतियों और योजनाओं से संभव नहीं होती। देश निर्माण में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए समझना आवश्यक है कि देश का विकास और हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। देश निर्माण का अर्थ केवल सड़कें, पुल, विद्यालय और अस्पताल बनाना नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जो आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण, वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और नैतिक मूल्यों से समृद्ध हो। ऐसा देश जहां प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और सम्मान के अवसर प्राप्त हों तथा सभी लोग मिलजुल कर आगे बढ़ें।

आज भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, डिजिटल सेवाओं, शिक्षा, उद्योग, कृषि और आधारभूत संरचना जैसे अनेक क्षेत्रों में देश ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। लेकिन विकास की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। हमारी पहली जिम्मेदारी एक अच्छे नागरिक बनना है। देश निर्माण की शुरुआत स्वयं से होती है। एक जिम्मेदार नागरिक कानूनों का सम्मान करता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है, यातायात नियमों का पालन करता है और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखता है। छोटी छोटी जिम्मेदारियां मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बनती हैं। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। संविधान के प्रति सम्मान, राष्ट्रीय एकता की भावना और देश के प्रति निष्ठा प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों में शामिल है।

शिक्षा देश निर्माण की सबसे मजबूत नींव है। शिक्षित नागरिक न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान देता है। विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वे ईमानदारी से अध्ययन करें, नई तकनीकों और ज्ञान को सीखें तथा अपनी प्रतिभा का उपयोग देश हित में करें। आज के विद्यार्थी ही कल के वैज्ञानिक, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी, प्रशासक, सैनिक और जनप्रतिनिधि बनेंगे। इसलिए उनमें अनुशासन, परिश्रम, नैतिकता, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करना आवश्यक है।

स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण केवल सरकारी प्रयासों से नहीं हो सकता। प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता की जिम्मेदारी निभानी होगी। हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, प्लास्टिक के अनावश्यक उपयोग को कम करना चाहिए और जल तथा बिजली की बचत करनी चाहिए। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्रदूषण कम करना और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग भी हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को हम सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य दे पाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए, स्थानीय उत्पादों और उद्यमों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए।

युवा पीढ़ी को रोजगार पाने के साथ साथ रोजगार देने वाले भी बने तो देश की आर्थिक शक्ति और बढ़ सकती है। नए व्यवसाय, स्टार्टअप, तकनीकी नवाचार और स्वरोजगार देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकते हैं। ईमानदारी देश निर्माण की आधारशिला है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कर चोरी और धोखाधड़ी जैसी प्रवृत्तियां राष्ट्र के विकास में बाधा डालती हैं। प्रत्येक नागरिक को अपने आर्थिक और सामाजिक दायित्वों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। सरकार को दिए गए करों का उपयोग देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के विकास में होता है, इसलिए कर व्यवस्था के प्रति जिम्मेदार व्यवहार भी राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

देश निर्माण सरकार और जनता की साझी जिम्मेदारी है। सरकार योजनाएं और नीतियां बनाती है, लेकिन उनकी सफलता नागरिकों के सहयोग पर निर्भर करती है। यदि सरकार विकास के लिए प्रयास करे और नागरिक नियमों की अनदेखी करें तो अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास, सहयोग और जिम्मेदारी की भावना आवश्यक है। हमें केवल समस्याओं के लिए सरकार को दोष देने के बजाय यह भी सोचना चाहिए कि हम स्वयं समाधान में क्या योगदान दे सकते हैं। देश निर्माण कोई एक दिन या एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक नागरिक की छोटी बड़ी भूमिका होती है। ईमानदारी से अपना काम करना, कानून का पालन करना, शिक्षा प्राप्त करना, पर्यावरण की रक्षा करना, स्वच्छता बनाए रखना, करों का सही भुगतान करना, सामाजिक सद्भाव कायम रखना और जरूरतमंदों की सहायता करना, ये सभी राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कदम हैं।

हमें यह याद रखना चाहिए कि मजबूत देश का निर्माण मजबूत नागरिकों से होता है। यदि हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाएं, तो भारत को अधिक समृद्ध, आत्मनिर्भर, स्वच्छ, शिक्षित, सुरक्षित और विकसित राष्ट्र बनाने का सपना अवश्य साकार किया जा सकता है।

सही यह है कि देश हमसे कोई अलग कोई वस्तु नहीं है, हम ही देश हैं। इसलिए देश के भविष्य की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। आज हमारा एक सही कदम, एक ईमानदार प्रयास और एक सकारात्मक सोच आने वाली पीढ़ियों के भारत को बेहतर बना सकती है। अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता, विषय था देश निर्माण और हमारी जिम्मेदारी। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में।

रेडियम वेव 296.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचारिता चैनल है। स्टूडियो घड़ी में 6:30:47 हुए हैं। वक्त हो रहा है गीत और गजल का कार्यक्रम गुलगुलसन का। आइए सबसे पहले सुनते हैं पंकज उदास को।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: रतनाल सा। न्याय सबके लिए, कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिस इज आकाशवाणी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी नाउ ब्रिंग यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूज एड्रेस टू द नेशन।
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। आपसे कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ

जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्यरूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवत्ती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश

हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नए उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत के विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ जति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश ये है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा हरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई

लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये विभिन्न क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारे गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर

के आरंभ का एक वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ओ ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को एक कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदे पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी का दोई, देश मंटे मनुष्य लोए। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार। ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे, आई कन्वे माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नेशनल फेस्टिवल। इन ए फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ, our country will witness the auspicious beginning of the 80th year since its independence. All Indians living in the country and abroad celebrate this festival with great joy. Our tricolor is the symbol of our freedom. We unfurl it with immense pride. On the 15th of August 1947, Bharat Mata was liberated from the shackles of subjugation. Every citizen became an architect of the destiny of independent India. The true meaning of freedom lies in ensuring that all citizens are able to utilize opportunities to fulfill their aspirations and work towards the goal of making India the foremost nation in the world. Dedicated students and teachers, scientists and engineers committed to development, doctors and healthcare workers providing health services, industrious workers and our annadata farmers are all contributing to nation building through their efforts. Talented sports persons, craft persons and artists, visionary intellectuals, diligent members of the workforce in the private and public sectors, people's representatives devoted to serving them, officials in the judicial system, dutiful civil servants, big and small investors contributing to our economy, selfless social workers, and

0: On the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI

0: याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।

0: सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय शिक्षा महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
0: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
0: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
0: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
1: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़।

0: है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पाराव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
1: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
3: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय

0: पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
1: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
0: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
2: आज उत्तरी उड़ीसा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बलंगा, सुवर्णरेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गांव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। IMD ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक समुदाय के उचित प्रतिनिधित्व

0: की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों और सीमा पार आतंकवाद पर चिंता जताई। भारत ने भूकंप प्रभावित कोलंबिया के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। बांग्लादेश में शिप ब्रेकिंग यार्ड में गैस रिसाव से 8 लोगों की मौत। और भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच कल से खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की विदेश नीति देश हित पर आधारित है तथा शांति, सहयोग, संवाद और वसुधैव कुटुम्बकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ हैं। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने अनेक देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है।
1: आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो।
0: भारत ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसका अभिन्न अंग है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे अत्याचारों और सीमा पार आतंकवाद के लिए क्षेत्र के इस्तेमाल पर ध्यान देना चाहिए।
2: Let me say that the whole of
3: पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता का विषय ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इस समय लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इस्तेमाल भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है।
2: फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म,
0: श्री जायसवाल ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में भारत और अफगानिस्तान के बीच कई बार बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के कई मंत्रियों के भारत दौरों से विकास, सहयोग, व्यापार और आवाजाही के क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ भारत के पुराने संबंध हैं और वह इन संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद करता है। बांग्लादेश में ऊर्जा संकट के बीच भारत से अतिरिक्त डीजल की मांग पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति के लिए पहले से ही व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि डीजल की अतिरिक्त मांग पर भारत की अपनी जरूरतों, रिफाइनिंग क्षमता और देश में डीजल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को द्विपक्षीय यात्रा के लिए निमंत्रण भेजा है। उन्हें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र के लिए भी भारत आने का निमंत्रण दिया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी मौलिक अधिकारों, कथित हत्याओं के लिए जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए कथित प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 100 लोगों की मौत हो गई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIRNews

0: हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आज बांग्लादेश में एक शिप ब्रेकिंग यार्ड में संदिग्ध गैस रिसाव के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों की मौत जहाज से निकली जहरीली गैस के कारण हुई। अधिकारी गैस रिसाव के कारण की जांच कर रहे हैं। चीन के हुनान प्रांत के लियान युआन में एक कोयला खदान में गैस का रिसाव हुआ है, जिसमें 7 लोग लापता हैं और एक व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा उपचार दिया जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना के समय 52 लोग खदान के नीचे काम कर रहे थे, जबकि 44 लोग सुरक्षित रूप से बाहर निकल आए हैं। बचाव अभियान जारी है और दुर्घटना के कारणों की जाँच अभी भी चल रही है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थाई आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में कौशल विकास पर भारत जापान हितधारक परामर्श का आयोजन किया। इस विचार विमर्श का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कौशल विकास सहयोग और कार्यबल की आवाजाही बढ़ाना है। परामर्श के दौरान मुख्य रूप से भारत जापान मानव संसाधन आदान प्रदान और सहयोग कार्य योजना को आगे बढ़ाने पर विचार हुआ। यह कार्य योजना पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच 15वें शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त रूप से जारी की गई थी। जापान में रोजगार अवसरों के लिए भारतीय युवाओं को तैयार करने और दोनों देशों की संस्थाओं के बीच निकट समन्वय पर भी विचार हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे पहल से पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
1: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
0: भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला कल गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से होगा। भारतीय टीम अपना 600वां टेस्ट खेलने उतरेगी। सुनते हैं वैष्णवी की रिपोर्ट।
2: शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ अपने शानदार रिकॉर्ड को कायम रखना चाहेगी। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल सलामी बल्लेबाज की कमान संभालेंगे। वहीं साई सुदर्शन की टीम से बाहर होने के बाद देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं। टीम में सरफराज खान की वापसी हुई है। अनुभवी रविंदर जडेजा लोअर डाउन दी ऑर्डर में भारतीय टीम को बल्लेबाजी में मजबूती देंगे। उनके साथ साथ मानव सुथार और सारांश जैन ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे। वहीं गेंदबाजों में कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरुनूर बरार और आकिब नबी को स्क्वाड में शामिल किया गया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक समुदाय के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों और सीमा पार आतंकवाद पर चिंता जताई। भारत ने भूकंप प्रभावित कोलंबिया के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। बांग्लादेश में शिप ब्रेकिंग यार्ड में गैस रिसाव से 8 लोगों की मौत। और भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच कल से खेला जाएगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani.
4: I'm Akhila with the World News. The headlines. President Draupadi Murmu reaffirms India's commitment to rules-based international order, calls for appropriate representation to global community at United Nations. New Delhi expresses concern over atrocities committed by Pakistani forces in POJK and the use of occupied

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठता तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित

0: वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाटा अप्पाराव के एक गीत का उल्लेख किया, जिसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूर्ण समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। यह सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों के यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। छात्रों ने कहा कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day this evening, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
1: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
2: President Draupadi Murmu highlighted that making the country a Naxal free is a major achievement, as for decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said today the areas once affected by Naxal